कच्चा माता कच्चा पिता कच्चा भाई कच्चा श्रीमती कच्चा छोरा कसको धन सम्पत्ति केही लानु छैन।

0: दुर्गा प्रसाद सेवापति कानून के साथ श्रृंखली शिवसारा सुदामा की नारी कर चढ़ी भारी विपत्ति ले पति छे जाई विनती कर चिंका पिटाले गुरु देवता राजा रूप भला मान सका निदान खाली हर बंकन कहुंच ज्योति समना देव के सौगर मन देव चंगा करिकिन निदंशु द्वारी का हर्षित मुलाका नगर में इच्छा वर्तन में विचार मुटिबे स्तंभ जमा कर दी सही स्तंभ बोली गए प्रयोजित पूछे द्वारिका में
1: नारायण
0: जन्यो बालका ओ जन्यो बालका ओ जगमग करने मन चित हरने जननो बालका नारायण हो किनवाने देखी झेल आमा चाहिँ झेल परेका बाबु बसिदेव देवकी दुवै झेलमा छोरछोरी जन्म सके फेरि कंसाले मार्चा भनी उता तिर भएकाले नारायण बैलाको चलेमा

आकाश मारे गगरी कुद्यार हनुमान उड़ाती आकाश मा सीताजी कान भेटी

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: टीम एडवर्ड इसको वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी दे दो इसको इसको गाड़ी चाहिए लंबी म्यूजिक चाहिए
1: लाउड
0: ये जाती महंगे क्रम में जहां होता डंका
1: क्राउड
0: लुधियाने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ती है कहती तो है स्टूडेंट है बट आई डाउट

0: Mania Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

नमस्कार रेडियो सैलन सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट म बजे प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 साल अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन् 2006 मे 21 तारीख ज्येष्ठ 7 गते बिहीबार पञ्चमी तिथि अब स्तुति गरौं

का पना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहर्दा नारीले प्रगति पथ को।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म। एउटौ शङ्खका पाला भूषित करौ मालस्ती माला धरौ देवौ द्वारौ तिस्म चानन निलौ नागरी गोवर्धनौ तिरिरक्षे बलिदक्षे।

यो सब ठीक पारी मन ले लगे अयोध्यातिर देखे श्री अमरावती सरी पुरी आनंद बोहर हर सारा लश्कर लीप से नगर मा चलते बड़ा सोरली

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: सम्राट महाते पांडव भाषण कुमा भाषण कालिका गोरक्ष गरुण र दानवहरू नागमा रावण नासिका।